0: तुम कुफा भी
1: नान गाना कौन रोने लो आ स्मार्ट ये फा मानो तो ओल्ड ओल्ड ये चिता क्लेवे उल्ला नंदी के लावन ये सच्चे मानो तो ओल्ड जन नूला हो सो आजाने सिलारा नाना लिया कितन नाचा उल्ला के नाला के ला के